0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।

0: हेलो
1: दीदी, राधे राधे।
0: राधे राधे दीदी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम समता जाधव है, वाड़कला से बोल रही हूँ।
0: और दीदी कैसे हो?
1: अच्छी है दीदी, ठीक है।
0: गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: अरे दीदी कुछ मत पूछो, गर्मी तो भयंकर पड़ रही है।
0: गर्मी बहुत है, बरसात नहीं हो रही है। गर्मी
1: दीदी,
0: गर्मी
1: सुनो तो, एक डब्बा था घी का, वो मैंने बाहर रख दिया धूप में, मैंने ये मतलब पिघल जाएगा, डब्बा ही पिघल गया इतनी तेज धूप।
0: हाँ तो बहुत तेज इंसान कहते हैं खड़ा नहीं रह सकता। एक पेड़ लगा रखा है छोटा सा मैंने, वो पानी खूब डाल रही हूँ, उसमें रोज डालती हूँ, तो वो पानी वो पेड़ छाया में रखा है, जब भी कत्ती डाली रह गए, सारे पत्ते झड़ गए उसके,
1: मुरझा जाते वो पेड़।
0: हाँ ये देख, धूप इतनी तेज पड़ रही है, ठंड वो उसमें रखा है छाया में, जब भी गर्मी इतनी तेज है, कितना भी पानी डाल लो उसमें पौधों में।
1: दीदी धूप इतनी पड़ रही है, मेरे आंगन में खुद तुलसी का पेड़ है, एक टमाटर का है, बिलपत्र का लग रहा है, पर दीदी वो इन बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, पत्ता मुरझा जाते हैं उसके।
0: वो इसलिए गर्मी है ना, ये बरसात का मौसम नहीं आया ना।
1: वही तो,
0: यही वो तो। कौन सा गाना सुनोगे दीदी?
1: मैं सुनूंगी बंटवारा का तुम्हारो कोने लागे।
0: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। हमारी रेडियो डीएच लाइव टीम कैसी है?
1: बहुत अच्छी। और मौसम कैसा है? गर्मी कैसी पड़ रही है उधर सर?
0: बस गर्मी मस्त वाली गर्मी है, एंजॉय वाली गर्मी है।
1: हाँ सर, बहुत ज्यादा हो रही है बारिश का कुछ मौसम नहीं है कि उधर?
0: नहीं नहीं, अभी तो बारिश यहाँ काफी हो चुकी है। बार बार बारिश, बार बार आंधी आ रही थी। बीते हफ्ते में तो काफी दिक्कत हुई थी, अभी तो ठीक है। 18 तारीख तक तो मौसम शुष्क रहने का अलर्ट दे रखा है।
1: बार बार बता रहे हैं तो 18 तारीख तक तो।
0: हाँ, 18 तारीख के बाद फिर वो यहाँ की तूफान, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बहुत कैजुअलिटी हुई है दीदी।
1: नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम तो।
0: नहीं यहाँ तो 111 लोगों की डेथ हुई है इस आंधी तूफान में।
1: माय गॉड।
0: और वैसे भी काफी फसलों को भी नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान हुआ है, पशुधन की भी हानि हुई है, जनहानि भी हुई है। तो प्रकृति इस बार दीदी बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी।
1: कुछ गर्मी भी, कुछ ये आंधी तूफान से भी लोगों का, गर्मी से तो क्या है कि गर्मियों से ज्यादा भार डोलने से धूप में पानी पी लेते हैं, उसमें थोड़ा खांसी जुकाम बस उसमें ही वो।
0: नहीं, प्रकृति का जो संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ नजर आया है इस वर्ष।
1: और अभी तो गर्मी कुछ नहीं है, आगे अभी तो जून नहीं आया, मई में
0: है। गर्मी जैसे ही बढ़ती है दीदी, गर्मी जैसे दो दिन गर्मी जैसे ही बढ़ती है, तीसरे दिन आंधी तूफान आ जाता है तो मुंबई टेम्परेचर फिर दड़ाम हो जाता है नीचे।
1: हाँ ये बात सही कह रहे हो। बताओ कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर आज?
0: तुमको मेरे दिल ने, नपू चक्कर फिल्म का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: यार कान पुराने नाम
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: पांच वक्त मीनारों से आती है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? गंगापुर सिटी। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: हमसे तुम दोस्ती कर लो।
1: हमसे दोस्ती कर लो।
2: हाँ
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आप

0: साथ है।
1: 89
2: हेलो
3: प्रणाम
2: जी सर, नाम क्या है आपका?
3: परेशान।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: लोकी कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: वो गाना है चूड़े वाली सनिया, मिलान ले लेंगे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:31 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। जैसा रूप है तेरा। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:34 का दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रियांश मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मलाना डूंगर माड़ोली।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे प्रियांश जी?
0: आखिरी
1: आखिरी इक्ष।
0: हाँ
1: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?
0: जी धन्यवाद।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हाँ जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: एम आई टेलर, मस्जिद गली, नाम दे मस्जिद गली।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: आई मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: हमारा नाम विकास मीणा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: हम उदयपुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: पैर पैर पर पैर जैसा।
2: नहीं चलेगा फिल्म।
3: ये नहीं चले?
2: नहीं, फिल्मी गाने बताइए।
3: फिल्मी?
2: हाँ जी।
3: तो ये चला दो, आधी रात में गोरी चला गए लेकर।
2: ओके जी, सुना।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम शिवम है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: दूध की डेयरी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मुझे तू चीज बड़ी है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।
2: मैम नमस्ते, गंगा प्रसिद्धि ब्रजमन महावर
1: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आप तो सुना दो, तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: है आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते राधे राधे।
0: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम है धीर भाई ठाकुर मोकला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: वो लड़की मुझे बहुत याद आती है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो
4: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करेंगे।
3: नमस्कार सर।
4: मुझे जो आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है गोलमाल, गीत के बोल है आने वाला पल जाने वाला।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
4: थैंक
3: यू, वेलकम।

0: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल,
3: DS89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89।
5: जी बहन प्रणाम।
6: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
5: मैं राजू यादव, ग्राम उपराय काशी रामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से।
6: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
5: गाना साथ फेरों के साथों बचन प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना, ये वाला गीत सुनाएंगे।
6: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: एक मित्र को लाइन में लेने क्या बहन?
6: सर लाइन
5: उनका कॉल नहीं लगता कभी कभी

0: हेलो
1: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: विनोद कुमार सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी माओकला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम कुछ कुछ होता है टाइटल सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे आपको फरमाइश करिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तो वक्त हो चुका है 11:32 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है देवेंद्र जोशी जी की। देवेंद्र जोशी जी ने हमें कॉल किया है सालोदा मोड़ गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: 89.6
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग
1: निशा शर्मा गंगा पुष्टि से।
0: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगे निशा जी?
1: ना यारो रब की दुआ करो मैं उसको भूल जाऊँ।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो में कॉल
1: करने चलाइएगा मैम।
0: कितना लेट चलाना मैम?
1: 11 बजे तक।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: अनुज मेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम उसके साथ क्या कर रही थी?
1: वो अचानक से मिला और कॉफी ऑफर किया। So what's wrong in that? इतना शक है तो हम शादी क्यों कर रहे हैं?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुड मॉर्निंग मैम, मैं आरती मीणा बोलती हूँ।
1: गुड मॉर्निंग, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आरती जी?
0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नैनो का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सावरिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: मैम मैं पूछ रही थी कि गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर कितना है?
1: गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 34 डिग्री चल रहा है इस टाइम।
0: कितना?
1: 34।
0: अभी बढ़ेगा क्या?
1: हाँ अभी जब देखते हैं, टाइम बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा जैसे दिन बढ़ते जाएंगे।
0: अच्छा, थैंक यू मैम।
1: यू वेलकम।

0: आपकी फरमाइश पर ये गाना। मैम नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: नाम क्या है आपका?
1: जी सेनास।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: क्या दिल ने कहा?
0: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:49 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है बॉबी और गाने की बोल है अखियों को रहने दे अखियों के पास।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। जुड़ीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर। हेलो,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: बेरन।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम मेरा लॉरेंस।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जम्मू कश्मीर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी गली से घर छोड़ के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: शाही वाला।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: आ कैद भी रहे और आबाद भी।

0: मैं कुछ नाराज ही है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं सर, वो नहीं सर। नाम क्या है आपका?
0: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर दीदी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो उसमें मैं
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नमस्ते, नाम क्या है सर आपका?
1: कहाँ
0: से बात कर रहे
1: हैं? मदीना बोल रहा हूँ
0: सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना वो सुनना चाहता हूँ साहब।
0: कौन सा?
1: तू जब जब पुकारे मुझको नदिया के मारे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कशिश।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: डुंगरपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: काला शाह काला जादू ऐसा कर डाला।
0: वो किस मैंने सुना रहे हैं आपकी?

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी के पास से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: ठीक है सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है सर आपका?
0: अनूप कुमार ग्राम उपरेखा तहसील सरीला जिला वीरपुर उत्तर।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना बता दें।
1: बताइए।
0: तेरी चेहरी से नजर नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: नाम क्या है आपका?
0: मैडम मेरा नाम गोपाल है, चला सतीश के हाथ से बोल रहा हूँ। माँ का लाडला बिगड़ गया, ये गाना लगा दो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: कमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा सर? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: इश्क़ानू मैं लेके लाता सावा दे,

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नाम क्या है आपका?
0: गोलू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: भरतपुर से मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ये

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: वो बड़ी बड़ी आंखों वाली

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सिया।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नारोर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: देखो ना मेल वर्जन।
0: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सर। रेडियो डीएस
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। और दोस्तों वक्त हो चला है दोपहर 1 बजने को है और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम नए तराने। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों करते हैं इंतजार की घड़ी को खत्म और लेकर हाजिर हूँ आपका मन पसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इस गर्मी के मौसम में बाहर कभी भी ना निकलें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर जनहित में जारी। सावधान, गर्मी और लू का कहर, बचें, स्वस्थ रहें। प्रिय श्रोताओं, राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू चल रही है। रेडियो डीएस 89.6 आपकी सेवा में ला रहा है गर्मी में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियाँ। पानी ज्यादा पिए, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी अवश्य पिए, प्यास न लगे तब भी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या ORS घोलकर पिएं। ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा चाय कॉफी से बचें। दोपहर की धूप से बचें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में बिल्कुल ना निकलें। अगर निकलना बहुत जरूरी हो

0: छाता, टोपी, गमछा या दुपट्टा लेकर निकलें। हल्के और सूती कपड़े पहनें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें। सिर, गर्दन और कान ढककर रखें। हल्का और ताज़ा भोजन लें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसे मौसमी फल खाएं। दही, छाछ और हरी सब्जियां लें। भारी, तला भुना और मसालेदार भोजन कम करें। घर को ठंडा रखें। दिन में खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। पर्दे खींच लें। शाम को हवा आने दें। पंखा या कूलर का इस्तेमाल करें। खास ध्यान रखें, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों पर विशेष नजर रखें। पालतू जानवरों को भी छाया और पानी देते रहें। लू लगने के लक्षण: चक्कर आना, उल्टी, तेज सिरदर्द, ज्यादा पसीना या पसीना बंद होना, बेहोशी। ऐसा हो तो तुरंत ठंडी जगह पर लाएं, ढीले कपड़े करें, ठंडा पानी पिलाएं और नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल पहुंचाएं। रेडियो DS 89.6 आपसे अपील करता है, गर्मी में सावधानी बरतें, परिवार का ख्याल रखें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6
1: पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: बैंकिंग फ्रॉड से बचे अपना पैसा बचाए प्रिय श्रोताओं आजकल बैंकिंग फ्रॉड UPI फ्रॉड फिशिंग कॉल और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं रेडियो DS 89.6 आपकी सुरक्षा के लिए ला रहा है बैंकिंग फ्रॉडिंग से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय OTP और पासवर्ड कभी शेयर न करें बैंक पुलिस या किसी भी व्यक्ति को OTP पिन CVV पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स न बताएं असली बैंक कभी OTP मांगता नहीं है अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें SMS, WhatsApp या ईमेल में आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, भले ही योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड या लकी ड्रॉ लिखा हो हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से लॉगिन करें फोन पर आने वाले कॉल्स पर सतर्क रहें आपका अकाउंट हैक हो गया है KYC अपडेट करना है पैसे डबल हो जाएंगे या साइबर पुलिस कहकर फोन करने वालों पर भरोसा न करें कॉल काटे और बैंक की आधिकारिक नंबर से संपर्क करें पैसे ट्रांसफर करते समय दोबारा जांचें UPI या ऑनलाइन ट्रांसफर से पहले नंबर और नाम अच्छे से चेक करें अनजान व्यक्ति को पैसे न भेजें मोबाइल और नेट बैंकिंग की सुरक्षा मोडेक लिस्ट अपना मोबाइल लॉक रखें दो चरणीय वेरिफिकेशन DFA ऑन रखें अनजान एप्स इंस्टॉल न करें बैंक की SMS अलर्ट हमेशा चालू रखें फ्रॉड हो जाए तो तुरंत करें ये काम 1. तुरंत बैंक कस्टमर केयर या 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें 2. UPI ऐप में ट्रांजैक्शन रोकें 3. नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं रेडियो DS 89.6 आपसे अपील करता है अपना पैसा अपना भविष्य फ्रॉड से बचाएं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 FM गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर
1: 89.6 पे रेडियो DS
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे

0: आँख से खून आता है और उसके बाद पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है। मतलब बड़ी बड़ी उम्र के अंदर भी इस तरह से कील मुहासे आते हैं कि भैया हो क्या गया शरीर के अंदर। जवानी में तो आते हैं, ठीक है, वो मानते हैं हम उस बात को, लेकिन इस उम्र के अंदर, बड़ी उम्र के अंदर भी आ रहे हैं। तो उस गर्मी का रामबाण इलाज लेके आया दोस्तों, 1 घंटे के अंदर आपके शरीर गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अजमा के देख लेना आप, मैं आपको वीडियो लंबा नहीं करूंगा, बहुत ही रामबाण इलाज लेके आऊँ। 1 घंटे, मतलब मैं तो 1 घंटा बोल रहा हूँ लेकिन आधा घंटे में आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल में फायदा देता है। इससे हमारी गर्मी मिलती है शरीर के अंदर और इसके से बहुत फायदे भी होते हैं और शरीर के लिए, सर्दी के लिए फायदे होते हैं। यहाँ पर है ये गोंद कतीरा, जो गोंद कतीरा वो हमें गर्मियों में फायदा देता है, जो शरीर को ठंडक रखता है, जिनमें शरीर के अंदर बहुत ठंडक आती है, तो ये है गोंद कतीरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये है गोंद कतीरा और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों की फॉर्म एक जैसी है, बिल्कुल दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सर्दियों के हिसाब से गोंद है जिसके हम लड्डू ही बनाते हैं, गोंद के लड्डू हम बनाते हैं या कुछ भी बोलते हैं ना इसे, वो हम बनाते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद यहाँ पर ले रहा हूँ मैं गोंद कतीरा, जो हमें कतीरा चाहिए था जिसे नाम है गोंद कतीरा। जी हाँ, इसका स्पेशल नाम हमारे यहाँ पर राजस्थान में गोंद कतीरा है। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं और नहीं भी बोलते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोनों चीज़ें कि आप बोलेंगे हमें फ़र्क इसका महसूस होना चाहिए। तो मैंने पानी डाला कटोरी के अंदर और दो टुकड़े इसके अंदर डाले गोंद कतीरा, सॉरी नॉर्मल गोंद के, और दो टुकड़े डाले गोंद कतीरा के। इसको हम रात भर भिगो के रखेंगे। जी हाँ, रात भर भिगो के रखेंगे और मैं दोनों का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं और बार बार सवाल ही पूछते हैं। ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सब्जा के बीज, जिसे हाँ जी हाँ सब्जा के बीज बोलते हैं, तुलसी के बीज बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है बेजल सीड्स। जी हाँ, ये बहुत ठंडक देता है शरीर के अंदर। तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। जी हाँ, 1 टीस्पून के आसपास मैंने ये लिया है और ये भी आपकी शरीर गर्मी करने में, गर्मी हटाने में सॉरी, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो बस इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो रात भर भिगो सकते हैं या हम इसको 10-15 मिनट पहले ही भिगो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये इसको पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे आप, जब मैंने बोला रात भर ही भिगो के रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इसे 15 मिनट पहले ही भिगो सकते हैं। ये मैंने देखिए दोनों चीज़ों को मैंने रात भर भिगोया था। ये था हमारा नॉर्मल गोंद जो सर्दियों में यूज़ करते हैं। ये देखिए पिघल चुका है, पूरा पानी हो चुका है, बिल्कुल पानी की फॉर्म में आ चुका है ये देखिए इस तरह से। तो ये तो था सर्दियों वाला गोंद जिसे हम बोलते हैं, और ये था गर्मियों वाला गोंद, गोंद कतीरा। इसका फॉर्म बिल्कुल जेली जैसा हो चुका है और इसका कोई खुद का टेस्ट नहीं होता है, इसमें आप किसी भी चीज़ में इसे खा सकते हैं, लेकिन शरीर में जो ठंडक देता है ना उसका तो आप सोच भी नहीं सकते। इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया और ये हम इसको हटा देते हैं और ये सब्जा के बीज हमारे, जो तुलसी के बीज हम बोल रहे थे, बेसल सीड्स बोल रहे थे जिसे, ये देखिए इस तरह से इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और ये भी शरीर में बहुत ठंडक देते हैं। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था शरीर के बारे में, लेकिन मैंने गोंद कतीरा यूज़ किया था। अब मैं दोनों को मिक्स करके आपको बताऊंगा किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून, ध्यान से सुनिएगा, 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ हमारा गोंद कतीरा और 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ सब्जा के बीज, तुलसी के बीज, बेसल सीड्स, है ना। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून के आसपास खसखस शरबत। जी हाँ, खसखस शरबत ले लें आप, नहीं तो आपको गुलाब का शरबत हो तो वो ले लें, मीठे के लिए आप कुछ ना लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। खसखस शरबत ठंडक बहुत देता है शरीर के अंदर, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ दूध, दो तरीके से बना के बताऊंगा आपको, जो दूध नहीं यूज़ करना चाहते उसके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद भी है, इसका मैंने बताया ना वो खुद का फ्लेवर कुछ भी नहीं होता है, इसे आप कभी भी ले सकते हैं। अगर भूखे पेट अगर सुबह ले लेंगे और आधा घंटे बाद कुछ भी खाए तो खा सकते हैं, वरना जब भी आपको शरीर में गर्मी हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट तरीका जो बता रहा हूँ, जो दूध नहीं लेना चाहते, इनको दूध से एलर्जी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो इसके साथ क्या है वही चीज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून हमारा गोंद कतीरा, 1 टेबल स्पून सब्जा के बीज और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नारियल पानी। जी हाँ, नारियल पानी बिल्कुल हर आजकल हर जगह मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो नारियल पानी के फायदे ही बहुत सारे हैं, नारियल पानी के फायदे इतने हैं कि कई शरीर की गर्मी दूर करता है, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम भी दूर करता है। तो बस ये नारियल पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। नारियल पानी आपके पास नहीं हो ना तो आप नॉर्मल पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें शरीर
1: में। है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: तो चलिए जल्दी से एक एक करके जानते हैं कि कौन से वो मसल्स ग्रोथ करने वाले फूड हैं। तो पहले नंबर पर एग्स। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि 100 ग्राम एग्स के अंदर आपको 12 ग्राम तक प्रोटीन, 10 ग्राम तक फैट और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और इसके अलावा 157 कैलोरीज भी आपको मिल जाती हैं। और एक एग को बॉडी बिल्डिंग में सोने और इसके अलावा 157 कैलोरीज भी आपको मिल जाती हैं। और एक एग को बॉडी बिल्डिंग में सोने का अंडा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी बनाने वाले लगभग सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। साथ ही ये काफी सस्ता भी होता है और काफी लोग वर्कआउट करने के बाद अंडे के पीले वाले हिस्से को अलग कर देते।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आपका

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
3: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डीएस साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट।

रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

तो वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है।

0: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
1: वो है कौन?
2: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:36 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

वेखा यादा कुलियां विच हवावां दे, अज भी कंडे चुगदा तेरियां राहां दे, तैनू फिर तो खुश वेखन ले आया हां। इश्कां नू मैं लेखे लाता सावां दे, इश्कां नू मैं लेखे लाता सावां दे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए हम तैयार हैं।
4: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डियास गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर।
3: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: नाम क्या है आपका?
0: विनोद कुमार सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी मऊकला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है मुस्कान और गाने का बोल है वो हो तुम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: बागों के हर फूल को अपना समझे बागुना।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: राधे राधे
1: राधे राधे दीदी की मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना। हेलो
0: दीदी राधे राधे।
1: राधे राधे दीदी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता यादव ने।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बाड़कला से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बड़े घर की बेटी का।
1: बड़े घर की बेटी का?
0: हाँ
1: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू दीदी।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: मैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: फिल्म का नाम फूल और इसका टाइटल सॉन्ग है फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा तेरा नाम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना
2: जी।

0: निवेदन कर रहा हूँ आवेदन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना देता हूँ।
1: हाँ जी बताइए।
0: मेरे जाने की आँख।
1: मेरी जान सी आँख।
0: मेरे जाने की आँख।
1: मेरे ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: चमक चल लो, जरा धीरे चल लो।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कर लो तुम कदर हमारी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून
0: निशा शर्मा, गंगापुर से। ठीक है,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे निशा जी?
0: इस सड़क के जो रोटी आज मैम।
1: कौन सा?
0: बिछड़ के रोटी नैन वाला सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई अक्षरा शर्मा जी की। अक्षरा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बदली से निकला चांद परदेसी पिया लौट के घर आ गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्यून इन कर रखा है आपने रेडियो डीएस 89.6। और इस वक्त अगर आप गंगापुर सिटी में हो और मुझे सुन रहे हो गाड़ी चलाते वक्त, और अगर गाड़ी स्लोली चला रहे हो तो शुक्र मनाओ कि आप गंगापुर सिटी राजस्थान इंडिया में हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप कनाडा में होते तो आपका चलान कट सकता था। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, कनाडा का ये रूल है कि वहां अगर आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, स्लो गाड़ी चलाते हो, तो आपका टिकट यानी कि चलान कट सकता है। लेकिन फिलहाल गानों का चलान नहीं कटने वाले, क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए सिर्फ रेडियो डीएस 89.6 पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घोंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस। और मैंने गूंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स। और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी होती। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता, पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है आपके लिए। अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: बस बस बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बातें सुनना, जब भी मैं आता हूँ यार ये गाने रुक जाते, पर गाने आपके लिए प्ले करो। उससे पहले आज का शो यही तक था। जाने से पहले यही कहूंगा कि
2: नफरत भी नहीं है तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ। ओहो, नफरत भी नहीं हूँ तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ, और तुम्हारा जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हूँ। हाय हाय हाय, इतना क्रिंज पॉसिबल नहीं है, पर अमेजिंग गाने सुनना पॉसिबल है।
1: हाँ जी, तो कल फिर मिलूंगा सेम जगह सेम टाइम। फिलहाल सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ स्वागत है आपका आपकी फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में। आज हम सफरनामे में बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेमिसाल जोड़ी के बारे में। 70 और 80 के दशक में एलपी का सामान्य अर्थ लिया जाता था लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, और इसके अलावा एक और अर्थ हुआ करता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसका एक सीधा मतलब यह भी था उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में एलपी ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के एक लोकप्रिय युग का सृजन किया था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ स्वागत है आपका आपकी फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में। आज हम सफरनामे में बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेमिसाल जोड़ी के बारे में। 70 और 80 के दशक में एलपी का सामान्य अर्थ लिया जाता था लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, और इसके अलावा एक और अर्थ हुआ करता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसका एक सीधा मतलब यह भी था उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में एलपी ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के एक लोकप्रिय युग का सृजन किया था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: वो सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। लक्ष्मीकांत जी का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत जी का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत जी ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वाद्य यंत्र मंडोलिया बजाने की शिक्षा बाल मुकुंद इंदौरकर से ली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, चलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारस मणि ने उनकी तकदीर बदल कर रख दी थी और फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। प्यारे लाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और वो चाहते थे कि प्यारे लाल वॉयलिन सीखें। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था और साथ में प्यारे लाल जी को भी ले जाया करते थे। प्यारे लाल जी का मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता जी के घर ले गए। लता जी प्यारे लाल के वॉयलिन वादन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्यारे लाल को 500 रुपए इनाम में दिए, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटे वॉयलिन का रियाज करते अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो में ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिली, जहां उन्हें 85 रुपए मासिक वेतन मिला। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा था। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वीं ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपए की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें वो छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेशी यात्रा करना उनका सपना था। आज सफरनामे में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6।
1: क्या बात है, बड़ा ही ताजगी भरा गाना सुना आपने रेडियो DS89.6 पे। और आप सोच रहे होंगे कि ओए होए होए, बहुत ठंड है यार गंगापुर सिटी में, क्या करे। सुनो, हम सिर्फ इंसान ही भैया ठंड के चपेट में नहीं आते। वो आईफिल टावर तो आपको पता ही होगा, जो इटली पेरिस में है ना, बिल्कुल हर साल ठंड के दौरान भैया वो 6 इंच तक सिकुड़ जाते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मत करो, आपकी मर्जी है। वैसे एक और फैक्ट बताता हूँ कि ठंड के दौरान अगर आप मुझे 1 घंटे हेडफोन लगा के, मुझे नहीं किसी को भी हेडफोन लगा के सुनते हो, गाने सुनते हो, तो बैक्टीरिया 700% यानी 700 गुना तक भैया बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप मुझे सुनना बंद कर दो। नहीं भैया, मुझे सुनते रहोगे तो 1 घंटे में आपके सारे टेंशन भी गायब हो जाएंगे। तभी 3 गाने सिर्फ आपके लिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।